0: बातें कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था शेयर करने में। हाँ जी, मैं जरूर आऊंगी जी, आप बुलाइए, मैं जरूर आऊंगी।
1: हम जरूर बुलाएंगे आपको
2: सुनने के लिए। बहुत
3: You're listening to NPR, Manawatu People's Radio. Te reo irirangi o na tangata o Manawatu. Kua ono karaka. Community notices on NPR.
4: Do you binge eat, purge, starve, or compulsively exercise? Wherever you are, whatever your problem with food, Addictive Eaters Anonymous can help. Visit aeainfo.org to find out more about Addictive Eaters Anonymous.
3: Community notices are a free service that anyone can use. Fill out the online form at npr.nz or call 06 357 9340.